0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: इसराइली फौज ने आज जनूबी लुबनान में दरियाए लितानी के शुमार में वाक़ तीन देहातों के रिहायशियों को मुमकिन हमले से कबल इलाका खाली करने का हुक्म दिया है, जो सरहद पार बढ़ती हुई कशीदगी में एक नए इजाफे का इशारा है। सोशल मीडिया पर अरबी जबान में जारी करदा एक इंतबाही बयान में फौजी तर्जुमान अविखाय अदराई ने शहरियों पर जोर दिया कि वह देहातों और कस्बों से कम अज कम 1,000 मीटर दूर चले जाएं। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स जो हिजबुल्लाह के अरकान, असलहे या तनसीबात के करीब होगा वो खतरे में पड़ जाएगा। नकल मकानी का ये हुक्म एक ऐसे वक़्त में आया है जब बार बार की खिलाफ वर्जियों और बाहमी इल्जामात के माबैन जंग बंदी को बरकरार रखने की कोशिशों के बावजूद इसराइली हमलों में तेजी आई है। कशीदगी में यह ताज़ा तरीन इजाफा हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम के उन बयानात के बाद हुआ है जिसमें उन्होंने लुबनानी और इसराइली एलचियों की तरफ से पेश करदा मशरूत जंग बंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। नईम कासिम ने इसके बजाय मुकम्मल जंग बंदी और इसराइल के मुकम्मल इनखला का मुतालबा किया था, जबकि उन्होंने शुमाली इसराइल पर दोबारा हमलों की वार्निंग भी दी थी। वाशिंगटन और हवाना के दरमियान कशीदगी में इजाफा जारी है। अमरीकी उमूर खजाना ने ऐलान किया है कि क्यूबा के सदर मिगुएल डायास कानेल, उनकी अहलिया और सौतेले बेटे समेत 5 अफराद को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। इस ब्लैक लिस्ट में दीगर अहम तरीन नाम साबिक रहनुमा राहुल कास्त्रो के बेटे और पोते के हैं। इस फैसले के तहत उन तमाम अफराद के अमरीका में मौजूद तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। पाबंदियां से शख्सियात तक महदूद नहीं हैं बल्कि क्यूबा की वजारत दिफा समेत जजीरे पर मौजूद सियाहत और फ्रेंडशिप इंस्टीट्यूट जैसे अहम तरीन इदारे भी इस पाबंदी के दायरे कार में लाए गए हैं। याद रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे जिसके तहत क्यूबा को तेल फराहम करने वाले ममालिक पर कस्टम ड्यूटी आयद की गई थी और उन्होंने क्यूबा को एक नाकाम रियासत करार दिया था। दूसरी जानब क्यूबा के रहनुमा डियाज कानेल ने यह कहते हुए खबरदार किया है कि वाशिंगटन फौजी मदाखलत के लिए बहाने तलाश कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो यह खत्ता खून के दरिया में बदल जाएगा।
2: फीफा ने अपने स्टेडियम कंडक्ट रूल्स में आखिरी लम्हात में तब्दीली की है जिसमें 2026 फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाले शायकों को स्टेडियम में दोबारा काबिल इस्तेमाल पानी की बोतलें लाने से मना किया गया है। गवर्निंग बॉडी ने जुमेरात को ऐलान किया कि खाली साफ दोबारा काबिल इस्तेमाल प्लास्टिक की बोतलें जो पहले स्टेडियम में इजाज़त दिए जाते थे अब इस हफ्ते के शुरू में नाफिज होने वाले ताज़ा तरीन कवानीन के तहत ममनू हैं। इस पाबंदी में बोतलें, कप, जार और कीन भी शामिल हैं और फीफा का कहना है कि इस इकदाम का मकसद चीज़ों के फेंके जाने और खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स या तमाशाइयों के जख्मी होने के खतरे को कम करना है।
1: इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें खत्म हुईं।

नवंबर में अंतालिया में मुनक्कदा कोपिकतिस मौसमियाती सरबराही कॉन्फ्रेंस से कबल शाया होने वाली एक नई इल्मी तहकीक ने एक ऐसे अहम माखज़ की जानब तवज्जो दिलाई है जिसे बैनुल अक्वामी मौसमियाती कानून ने तवील अरसे तक नज़रअंदाज किया। वो माखज़ है इस्लामी कानून। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की शाया करदा किताब कैम्ब्रिज हैंडबुक ऑफ इस्लाम एंड एनवायरमेंटल लॉ 14 सदियों पर मुहित इस्लामी कानून के माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, कुदरती वसाइल के इंतजाम और माहौलियाती हुक्मरानी में इसके किरदार के जायजे पर मबनी है। टीआरटी वर्ल्ड के लिए काज़म आलम की तहरीर करदा तज़ियाती रिपोर्ट आपके पेश खिदमत है। किताब के मुदीरान में से एक बेरी यूनिवर्सिटी के कानून की प्रोफेसर नादिया बी अहमद के मुताबिक इस्लामी कानून सिर्फ एक तारीखी या सकाफती वर्षा नहीं बल्कि एक ऐसी भरपूर कानूनी रवायत है जो मौजूदा मौसमियाती बहरान के लिए काबले अमल हल फराहम करती है। नादिया अहमद का कहना है कि बैन अल-अक़वामी मौसमियाती कानून के बड़ी हद तक मगरबी यूरोपी नुक्ता नज़र के तहत तश्कील पाने की वजह से इस्लामी कानून जैसी मुतबादल कानूनी रवायात को नज़रअंदाज किया गया है। इस किताब का मकसद इसी महरूमी को नुमाया करना और ये दिखाना है कि इस्लामी कानून मौसमियाती नज़्म व ज़ब्त में किस तरह मौसर किरदार अदा कर सकता है। इनके मुताबिक बावजूद के ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में इनका हिस्सा निस्बतन बहुत कम है, मौसमियाती तब्दीलियों के सबसे संगीन असरात उन माशरों पर पड़ रहे हैं जो ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं और कुर्रा अर्सी के जुनूब में वाक़ हैं। इसीलिए मौसमियाती मसला सिर्फ माहौलियाती नहीं बल्कि इंसाफ का मसला भी है। इस्लामी कानून के बाज़ बुनियादी उसूल आज की मौसमियाती पॉलिसियों के लिए खास अहमियत रखते हैं। इनमें से एक तसव्वुर खिलाफत यानी इंसान के इस दुनिया में अल्लाह का खलीफा होने का तसव्वुर है। इस तसव्वुर की रूह से इंसान जमीन का जिम्मेदार निगहबान है। दूसरा हीमा का निज़ाम है जो मुश्तरका कुदरती वसाइल को अवामी मुफाद के लिए महफूज रखने पर जोर देता है। इसी तरह आबी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से मुतल्लिका कानूनी उसूल और पाकिस्तान में ऐसे आईनी मुकदमात जिनमें माहौलियाती नुकसान को इंसानी वकार की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है इस रवायत की मुआसर मिसालें हैं। ताहम हुक्मरानी के ये तमाम तरीक़ाकार मगरबी जुबानों में तश्कील पाने वाले गालिब मौसमियाती बयानिये से बड़ी हद तक बाहर रहे हैं। नादिया अहमद के मुताबिक इस साल के आखिर में तुर्की की जानब से कोपिकतिस की मेज़बानी इस खला को पहली मरतबा सियासी तौर पर काबले फहम बना रही है। किताब में अस्करियत पसंदी के माहौलियाती असरात को भी तफसील से बयान किया गया है। नादिया के तहरीर करदा एक बाब में कहा गया है कि जंगों से पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को बैन अल-अक़वामी मौसमियाती मुज़ाकरात में बड़ी हद तक नज़रअंदाज किया जाता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि फौजी सरगर्मियों से पैदा होने वाले जहरीली गैसों के अखराज को बहुत से बैन अल-अक़वामी मौसमियाती मुआहिदों में हिसाबदेही की जिम्मेदारी से मुस्तस्ना रखा गया है। इनके मुताबिक जंगें सिर्फ इंसानी जानों का नुकसान नहीं करती बल्कि आबी निज़ाम, ज़रई ज़मीनों और इन माहौलियाती ढांचों को भी तबाह कर देती हैं जो माशरों की बका के लिए ज़रूरी हैं। वो कहती हैं कि इराक, गजा और अफगानिस्तान में ऐसी मुस्लिम आबादियां रहती हैं जिनका माहौल कई दहाइयों पर मुहित फौजी सरगर्मियों के बायस तबाह हो चुका है, बावजूद है कि ये जंगें ना उनकी पसंद थीं और ना ही उनकी पैदा करदा। इराक में बरसों तक जारी रहने वाली जंगों ने मशरक वस्ता के सबसे बड़े जरखेज इलाकों यानी मेसोपोटामिया के आबी इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचाया। गजा में अक्टूबर 2023 से इसराइल ने सैकड़ों टन धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया जो हिरोशिमा पर गिराए गए बमों जैसे कम अज कम 6 एटम बमों के बराबर करार दिया जाता है। मुसलसल बमबारी ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों, शमसी तवानाई के बुनियादी ढांचे और ज़रई ज़मीनों को तबाह कर दिया जिसके नतीजे में वो सूरत हाल पैदा हुई जिसे किताब में इंसान साख्ता माहौलियाती तबाही का इलाका कहा गया है। अफगानिस्तान में छोड़ा गया फौजी साजो सामान माहौल को आलूदा कर रहा है और जंगी दौर में दरख्तों की कटाई ने सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के खतरात में इजाफा कर दिया है। नादिया के मुताबिक ये नतीजे इत्तेफाकी नहीं बल्कि जंग के पैदा करदा असरात हैं। इस्लामी माहौलियाती इखलाकियात माहौलियाती तबाही को सलामती पॉलिसियों की नागुजीर कीमत के तौर पर कबूल नहीं करते। ये नुक्ता नज़र 3 बुनियादी उसूलों पर कायम है। नंबर 1 खिलाफत, जमीन के हवाले से इंसानी जिम्मेदारी। नंबर 2 मीज़ान, इलाही तवासुन और नज़्म का तहफ़्फ़ुज़। नंबर 3 अदल, माहौलियाती बोझ को मखसूस माशरों पर न डालना। नादिया के मुताबिक जदीद जंगी तरीके इन तीनों असूलों की बायक वक्त खिलाफ वर्जी करते हैं, इसीलिए इस्लामी माहौलियाती कानून में असलहे की तख़फ़ीफ़ को मौसमियाती पॉलिसी से अलग मसला नहीं समझा जाता बल्कि इसे माहौलियाती इंसाफ का फितरी हिस्सा तसव्वुर किया जाता है।
ان کا کہنا ہے کہ پیرس معاہدے میں فوجی اخراج سے متعلق استثناء بڑی عسکری طاقتوں کے مطالبات کے نتیجے میں شامل کیا گیا، جبکہ اسلامی قانون کسی بھی انسانی سرگرمی کو اس کے ماحولیاتی نتائج سے مستثنی قرار دینے کو جائز نہیں سمجھتا۔ تین سو چوالیس صفحات پر مشتمل اس کتاب میں ہیما نظام کے تاریخی ارتقاء، حنفی اراضی قانون کے دیہی ہجرت کے مسائل کے حل میں ممکنہ کردار اور ساحلی و بحری ماحولیات سے متعلق کلاسیکی اسلامی قانونی ضوابط پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ پاکستان میں آئینی مقدمات کو اس بات کی جدید مثالوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ کس طرح اسلامی تصور انسانی وقار کو ماحولیاتی حقوق میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ کتاب ظاہر کرتی ہے کہ اسلامی ماحولیاتی قانون صرف ایک تاریخی فکری نظام نہیں، بلکہ ایک ایسے عملی اور آزمودہ ذرائع فراہم کرتا ہے جو مختلف ادوار اور خطوں میں نافذ کیے گئے اور آج بھی ترقی پا رہے ہیں۔ نادیہ احمد کے مطابق ترکیہ کے ضلع انطالیہ میں جمع ہونے والے عالمی رہنماؤں کے سامنے بنیادی سوال یہ ہے کہ آیا بین الاقوامی ادارے اسلامی روایت کو محض ایک ثقافتی پس منظر کے طور پر دیکھتے رہیں گے، یا اسے موسمیاتی بحران کے حل کے لیے ایک سنجیدہ قانونی ماخذ کے طور پر تسلیم بھی کریں گے۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اختتام ان الفاظ پر کیا ہے کہ انطالیہ میں جمع ہونے والے ممالک ان تنازعات کے ماحولیاتی اخراجات برداشت کر رہے ہیں جن کا آغاز بڑی حد تک انہی ریاستوں نے کیا تھا جنہوں نے معاہدوں میں استثناء کی شکیں شامل کروائی ہیں۔